हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल। संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है मन्ना डे के स्वर में। बोल तहिते आयो शरण सवेरे।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। लीजिए सुनिए आलोक गांगुली के स्वर में ब्रह्मानंद की ये रचना, सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।

आप सुन रहे थे भारतीय संगीत का रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत।

ಪರಮ ಪುರುಷ ಪಾಪನಾಶನ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪರತರ ಪರಮ ಆಪ್ತ ಪರಾತ್ಪರಾತ್ಮಕ

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं

0: राग बहादुरी तोड़ी में ख्याल गायन। कलाकार हैं देवप्रिय अधिकारी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं समीर नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बहादुरी तोड़ी में ख्याल गायन। कलाकार देवप्रिय अधिकारी।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट आ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन। लिसन टू अ ख्याल इन राग बहादुरी तोड़ी। आवर आर्टिस्ट दिस मॉर्निंग देवप्रिय अधिकारी। Accompanying on the tabla, Samir Nandi, and on the harmonium, Rathindranath Chakravarti. Now, listen to a khayal in Rag Bahaduri Tori by our artist this morning, Devapriya Adhikari.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बहादुरी तोड़ी में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे देवोप्रिय अधिकारी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे समीर नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग मियां की तोड़ी में गिटार वादन। आज के कलाकार हैं प्रदीप नाग। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सत्यव्रत चट्टोपाध्याय। तो लीजिए सुनिए राग मियां की तोड़ी में गिटार वादन, कलाकार प्रदीप नाग।
1: You are listening to a khayal in Rag Bahaduri Tori by our artist this morning, Devapriyo Odhikari. Accompanying on the tabla, Samir Nandi, and on the harmonium, Rathindranath Chakravarti. This is Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, now listen to a guitar recital in Rag Mia Ki Tori, by our next artist this morning, Pradeep Nag, accompanying on the tabla, Satyabrata Chatterjee. Now, listen to a guitar recital in Rag Mia Ki Tori by our artist Pradeep Nag.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मियां की तोड़ी में गिटार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे प्रदीप नाग। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सत्यव्रत चट्टोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a guitar recital in Rag Miya Ki Tori by our artist Pradeep Nag, accompanying on the tabla Satyabrata Chatterjee. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान और सहकारियों द्वारा प्रस्तुत शहनाई वादन। प्रस्तुत है राग केदार। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है, द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक we present Shehnai recital by Ustad Bismillah Khan and Party. Ustad Bismillah Khan and Party presents Raag Kedar. Vilambit Gat set to Ek Taal and Drut Gat set to Teen Taal.

ये थी सुगम धुन। आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान और सहकारियों द्वारा प्रस्तुत शहनाई वादन। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज सुगम धुन। यू वर लिसनिंग टू शहनाई रिसाइटल बाय उस्ताद बिस्मिल्ला खान एंड पार्टी। दिस वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया राग बिहग. आलाप के बाद विलंबित और द्रुतगत क्रमशः तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital in Raag Bihag by Pandit Debu Chaudhary. The alap is followed by Vilambit and Drutgat set to Teen Tal. Pandit Debu Chaudhary is accompanied on the tabla by Rafiuddin Sabri.

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया राग बिहाग सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए धुन राग मांड। तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग बिहाग प्लेड ऑन द सितार बाय पंडित देबू चौधरी। लिसन नाउ टू धुन राग मांड। द अकॉम्पनीमेंट ऑन तबला इज प्रोवाइडेड बाय रफीउद्दीन साबरी।

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया धुन राग मांड सुन रहे थे। तबले पर आपकी गति की थी रफियुद्दीन साबरी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू पंडित देबू चौधरी प्लेइंग धुन राग मांड ऑन द सितार। ही वाज अकंपनीड बाय रफियुद्दीन साबरी ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

Then,

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आइए सुनते हैं श्रुति गोखले का गाया राग पटदीप. मध्य लय की बंदिश झपताल में है. बोल हैं कैसे कहूं मत जाओ विदेश. द्रुत बंदिश एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं तू है कली जो खिली मोरे अंगना.
2: Listen to Hindustani classical vocal by Srimati Shruti Gokhale presenting Raag Patdeep, Madhyalaya Bandish, set to Jhaptal, Bol, Kaise Kahu Mat Jao Bidesh, and Drut Bandish, set to Ektal, Bol, Tu Hai Kali Jo Khili More Angna.

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। अभी आप श्रुति गोखले का गाया राग पटदीप सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे मिलिंद जोशी, हारमोनियम पर थे प्रकाश वगळ। आइए अब सुनते हैं श्रुति गोखले का गाया राग पुरिया धनाश्री। विलंबित बंदिश तिलवाड़ा में निबद्ध है, बोल हैं अरे मन काहे। द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं देहो नित मोहे।
1: This is Ragam 24/7 DTH, anytime Indian music. You are listening to Rag Patdeep by Srimati Shruti Gokhale. Accompanying her on tabla was Milind Joshi and on harmonium, Prakash Vagal. Continuing the concert, now listen to Rag Puriya Dhanashri by Srimati Shruti Gokhale. Vilambit Bandish set to Tilwara, bol Are Man Kahe. Drut Bandish set to Teen Tal, bol Deho Nit Mohe.

0: अभी आप श्रुति गोखले का गाया राग पुरिया धनाश्री सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे अनुतोष देघारिया और हारमोनियम पर थे अनिरुद्ध गोसावी। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है। हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल बाय श्रीमती श्रुति गोखले। Accompanying her on tabla was Anutosh Digharia and on harmonium was Aniruddha Gosavi. This program was contributed by All India Radio Mumbai for Ragam 24/7 DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग बैरागी में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं खगेश कीर्तनिया. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रूपक मित्रा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं देवाशीष अधिकारी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to a khayal in the rag Bairagi. Our artist is Khagesh Kirtanya. Accompanying our artist on the tabla is Rupak Mitra and on the harmonium is Devashish Adhikari.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बैरागी में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे खगेश कीर्तनिया। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे रूपक मित्रा और हारमोनियम प्रसाद दे रहे थे देवाशीष अधिकारी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग परमेश्वरी में सितार वादन। कलाकार हैं कौशिक बसाक। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं इंद्रनील भादुड़ी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग बैरागी। आवर आर्टिस्ट वॉज खगेश कीर्तनिया। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वॉज रूपक मित्रा and on the harmonium was Debashish Odhikari. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sitar recital. Listen to a sitar recital in the rag Parameshwari. Our artist is Kaushik Boshak. Accompanying our artist on the tabla is Indranil Bhaduri.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग परमेश्वरी में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे कौशिक बसाक। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे इंद्रनील भादुड़ी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Parameshwari. Our artist was Kaushik Boshak. Accompanying our artist on the tabla was Indranil Bhaduri. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है अंजनी कुमार मिश्र का गाया शास्त्रीय गायन. आप सबसे पहले राग शुद्ध सारंग प्रस्तुत करेंगे. विलंबित ख्याल के बोल है मेरो मन हरो जो कि एक ताल में निबद्ध है तथा द्रुत ख्याल के बोल है विनती करत मैं तो हारी जो कि तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ हारमोनियो पर है इलियास खां और तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र.

अभी आप सुन रहे थे अंजनी कुमार मिश्र का गाया राग शुद्ध सारंग। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया राग यवन। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है और बोल है माई मोतियन करूंगी। द्रुत ख्याल जो कि तीन ताल में निबद्ध है, बोल है भवन न भावे रे रैन दिन श्याम। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे प्रमोद कुमार मिश्र और हारमोनियम पर है इलियास खां।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अंजनी कुमार मिश्र का गाया राग यमन। आइए अब सुनते हैं रुनाडे का गाया राग सरस्वती कल्याण। आप द्रुत ख्याल प्रस्तुत करेंगे जिसके बोल है तेरो ही नाम रटत। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं ठाकुर प्रसाद मिश्र और हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं इलियास खां।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे रूना डे का गाया राग सरस्वती कल्याण। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में खयाल गायन. कलाकार हैं शाश्वती मंडल पॉल. राग है हमीर. विलंबित खयाल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं जाग रही सगरी रतियां. तीन ताल में निबद्ध द्रुत खयाल के बोल हैं कैसे घर जाऊं लंगरवा. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया और वॉयलिन पर प्रवीण श्योलीकर. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग हमीर. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला एंड प्रवीण श्योलीकर ऑन द वॉयलिन.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं शाश्वती मंडल पॉल। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे शाश्वती मंडल पॉल से राग कौंसी कान्हड़ा। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं राजन के महाराजा। तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं काहे करत मोसे बरजोरी। कंटिन्यूइंग द वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल, यू विल लिसन राग कौंसी कान्हड़ा।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार थी शाश्वती मंडल पॉल। संगत कलाकार थे तबले पर सलीम अल्लाह वाले और वॉयलिन पर प्रवीण शिवलिकर। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय सलीम अल्लाह वाले ऑन द तबला एंड प्रवीण शिवलिकर ऑन द वॉयलिन। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग गुर्जरी तोड़ी. तबले पर आपकी संगति की रफीउद्दीन साबरी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ सितार रिसाइटल बाय प्रतीक चौधरी. ही इज अकॉम्पनीड ऑन द तबला बाय रफीउद्दीन साबरी. प्रतीक चौधरी फर्स्ट प्रेजेंट्स राग गुर्जरी तोड़ी.

0: अभी आप सुनिए प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग गुर्जरी तोड़ी। प्रतीक चौधरी कंक्लूड्स सितार रिसाइटल विद राग शुद्ध सारंग।

0: अभी आप प्रतीक चौधरी का सितार पर बजा राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल बाय प्रतीक चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है भारतीय संगीत का रागम DTH चैनल. हर दिन हर पल भारतीय संगीत संत

आप सुन रहे हैं राग डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए अब सुनिए उषा मंगेशकर के स्वर में संत रैदास की रचना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।

संजीवनी भैलांडे के स्वर में आइए अब सुना जाए संत मीराबाई की ये रचना, तुम मोरी राखो लाज हरी।

संत कबीर दास की यह रचना प्रस्तुत है मंगल मिश्रा के स्वर में। बोल तेरी यारी में यार मजा यही पाया।

आप सुन रहे हैं रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए सुनिए शंभू लहरी और चंचल लहरी के युगल में कृष्णदास की ये रचना, बोल जब ते श्याम।